0: நேரம் 2:35. ஆகாஷவாணி நேர்கள் இனி கேட்கவிருப்பது சேர்ந்திசை பாடற் பயிற்சி.
1: ஆ பச்சோ, ஆஜ் தும் சப்கோ எக் சிந்தி கீத் சிகாயா ஜாயேகா, ஜிஸ்கே கவி கா நாம் ஹை ஸ்ரீ ஹுந்தராஜ் துகாயல். இஸ் கீத் கி துன் ஸ்ரீ கானு கோஷ் நே பனாயி ஹை. அப் இஸ் கீத் கே போல் லிக்னே கே லியே தும் சப் தயார் ஹோ ஜாஓ.
2: பியாரே பச்சோ, யே ஹை சிந்தி மே தேஷ் பக்தி கா கீத். சீர்ஷக் ஹை ஹீ முஞ்சோ வத்தன். मुखड़ा ही मुझो वतन मुझो वतन ही मुझो वतन मुझो वतन मिसरी खां मिठेरो माखी खां मिठेरो मिसरी खां मिठेरो माखी खां मिठेरो कुर्बान तह वतन ता कया पहंजो तन बदन कुर्बान तह वतन ता कया पहंजो तन बदन ही मुझो वतन मुझो वतन मुझो वतन. पहला अंतरा, मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब न वारिया मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब न वारिया जेकी हुजेम डेई वरी कीन पचारिया जेकी हुजेम डेई वरी कीन पचारिया दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन ही मुझो वतन मुझो वतन मुझो वतन. दूसरा अंतर है, जे चाह अथम कात वतन शाद दिसा मां जे चाह अथम का त वतन शाद दिसा मां आजाद दिसा मां सदा आबाद दिसा मां आजाद दिसा मां सदा आबाद दिसा मां मस्ती इन्हीं में आहे दुखायल जी दिल मगन मस्ती इन्हीं में आहे दुखायल जी दिल मगन ही मुझो वतन मुझो वतन मुझो वतन मिसरी खां मिठेरो माखी खां मिठेरो ही मुझो वतन मुझो वतन मुझो वतन.
1: अब श्री कानू घोष इस गीत की धुन तुमको सिखाएंगे.
3: प्यारे बच्चों, एक गीत मैं और मेरे साथी श्री फारूक पहले गाकर सुनाएंगे, तुम सब उसी धुन में गाओगे. अब सुनो.